0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कन फंसे हैं गोते। मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदा दु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरी हाँ बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिल कस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबा वैरो बिल नो देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उड़े कर नुचे है ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे माँ फाही।
3: टेक के दुनिया अंग अलगन में खोग्गे मिलनी किताब बना दतरु कंग हंदांग हुरी किताब बेफुलन तो मिस वाल के जवाब दतरु निमुंगे कुरिंग अलगन रो त्याय हुं तेरी ना हिस्सा कुराना टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफनी तक उनके नमंदा बदल तक बलानु लादू कोल्लम की कुरम वाने वारों के कमेनो मैं हफ्ते खास टेक के एमए फाउ के खबर तंग डुआ हाला त्येवे फ्रंट तैयार तो एमए मा खबर फरबदें या बदल तक आको फरबदें गिनेस्ते टेक के खबर तंग डुआ हाला मा

मी हफ्त्यागटी खबरता काय कस्मीबद्दल कुरी अळकणू रश्वाण टे खबरता होगे सुरू हीता होगे तेरेगा एपल के आ सीईओ का जॉन टर्नस आयन कॉफी इंस्ट्रक्चर कंपनी के कैनवस हे कुरी खबर गई तुरुं फुजी फिल्मों इंस्टेक्स मिनी तेरा बाजार नेरुन खबर के तफसील वस मिगडीगा खबर तो के तफसील को कुरिया दानं दुनिया के टेक्नोलॉजी के मैदानों का एम नुफूज का एक कंपनी का मवा एप्पल के हिंगुम के एम इस मगामा बोडु बदले के नउमा एक कंपनी के बोडु रस्मी को निम्मा यूलान कॉफी एप्पल ने नेरुनो बयाने का बुने फवणी देहास 11 वन हरो फिशिंग एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मगाम फुरुबम के देवी टीम कुक ए मगामु वकी वडा करने वाले कमा कुक के बदल के एप्पल के आ सीईओ के मगाम आईएन कुरनी माफवणी मिहार कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के मगाम गहुनेवी जॉन टर्नस मे बदल रस्मि कों अमली सिफानानी अन्न सितंबर मोहगे एवन दोहु फिशिंग मे बदल आए को टीम कुक एप्पल कंपनी मुले वकीवे वडे नुगनवाने एना दे फुरवाणी एप्पल के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के मगाम मे आदावरुका कुक्के एम्मे बोडु मसूलियत कव्वाणी दुनिया के एकी गौमुतागे सरकार तक सियासत कंडाळा इस्फराय तक गुळुम बदै कुरुं मी फायतु विधिहवरक अहरुगे तेरेगा एप्पल गे सप्लाई चेन आदि बयन लगवा मी व्यापारी फुळा कुरुमा कुक वर बोडु इस्कमे देवि दायराय कुक मगामु वके वडा गन्न वायरु जॉइंट टर्नस कुरिम बलहट्टवम गें देवि हार्डवेयर इंजीनियरिंग गे बयता मेदम फशिगें बलहट्टवाणी कुंफोनी गे तजरिबा कर देबे फुळु कमवा जोनी सुरुजी आदि टॉम मरीब टीम कुक के फाइनल रहर के दौर की एप्पल के तारीख का दुंग एम में कामयाब ए दौर देहा से गार वन हर कंपनी के बाणी स्टीव जॉब्स बलिहाल थोरी को तुंग मगा मुंदुरु मा गुड़िगिंग कुक सीईओ के मगा मा हवाल वीर एप्पल के मार्केट अग की 35 बिलियन डॉलर नमस एना गहरु दना हिंगुम के दशुं एप्पल में वणी 4 ट्रिलियन डॉलर का अघोरी कंपनी का बदलेफा कुक के दौर का आईफोन के एक ही मॉडल तो गेतुरुं एप्पल वॉच एयरपॉड्स आदि एप्पल के अमिल चिपसेट का मवा एप्पल सिलिकॉन फायदा उफे दुनता तारफ को कुंफुनी के आमदनी वनी इंतहाय गेतुर कोफा एप्पल के आ सीईओ जॉन टर्नस की देहास एवन आहार फिशिंग एप्पल का मसिक के कुरबम गेंदवा कुंफुनी के मसिक कतु के माहौला फलसफा एम में रंगला दन्ना ए बेफुला उमर फंसास आहार के टर्नस वनी आईफोन आईपैड आदि मैक कंप्यूटर तो के हार्डवेयर फार्मा कुरुमगे इस दौरे अदा कुरवाफा टीम कुक वनी टर्नस की ईजाद वेरी सिकुंडी के वेरी के कोतुका सिफा कुरवा एप्पल के मुस्तकबल एनाग एम्मती का अमाम वाणी कम के यकीन कर देवाफा

0: फिनादत बदल कोली कोंकुचका
1: तन लूना
0: लूना किया कुचका वाह के दिखी दो ए म लूना है कि कोंका हाला कंद तक कुरा कुजे
1: दिवे दिवे
2: दिवे दिवे
1: भी कुरा कुजे
3: कदक्का कुजे
0: दिवे ही बहुम वाह कदक्का कुजे ए म लूना है कि दिवे ही बहा
1: लोभी
0: कुरा कुजे ए मीमा दिवे ही बहा लोभी कुरुम के गोतुं लूना कोंगुले नी कोंकंद तक ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: शुक्रिया।
1: हाँ द रीत बंज केंगे की के तमी बांधी गमी कियानी कुंभा के मी बुननी
0: क्या वाशे गोस कुदिंग उड़े गोता नूले न में
1: आ मी कुदिंग मी बुननी मी कुदिंग किया वान में दो एम एहिं गोस कुदिंग कुरा कांतत तके नुकुरान में दो
0: अधि मामा बाप्पा बुना गोता मामा बाप्पा एदे गोता किया वागे मुड़वान
1: मामे या बाप्पा इदला बाग गोता किया वागे मुड़ कुछ का वाम मी बेन मणि दो
0: लब्बा
1: रीति बंजित ता दो ए मी कुदिंग मी गोता कांतक पुरे वेने ता कुरिया कुदिंग में
0: लब्बा
1: वारा रंगल शनाया दें किया दे मियोलेनी
2: वाहके
1: अब हंगा पुरी अदा मादो
2: मैं वाहके आगे नमकी कुड़ा कुड़ा फुल्ला एद्दुआ को उलोनी कुड़ा कुड़ा फुल्ला ए मैं फुल्ला उलेनी फुल्ला के मम्मा याए को फुल्ला फुल्ला के मम्मा देखे वारल्लो बिवाने एं कमु फुल्ला के मम्मा वेस फुल्ला देखे वारल्लो बिवाने मी वरट चरी का ही वा फुल्ला या फुल्ला गे मम्मा फेंबो कोर गे अने फरात गुआहुन अने मीरु मीरु बोड़ेती चरी गस्ता कम्मे दुआ को इस फुल्ला गे मम्मा दान चरी बिन्ना एकमा को दानी हावीरु गड़ेगा तिया को दिन्ना इंगे ता एक ही विकंग एहिं गड़ी तकुगा कोर वतरे गाउन्नड बोडु बोडु नुरक्का किंबूता मि किंबूता उलेनी कुडा कुडा फुल्ला कालं एद्दुआ कु कुडा कुडा फुल्ला वर बोडे चेरी काहि वेज अदि मम्मा कैरिय गोस बुनले
3: मम्मा मम्मा अलकन वर बोडे चेरी काहि वेज इन चेरी बिन्नंदमा
2: मम्मा बुनसि दरिफुला मैं गड़ी गया थी दाने कमेंट नहीं एक कल बड़ो किंबोले नहीं दर फ्लोका लंग अधि देख उड़े लंग कुड़े कुड़े फुल्ला नून के बड़ा काफ़ा बुने फ़ागोस दुव्वा गने फ़ागोस फिंको राही साबा हुट्टा ले अधि ही तंगेरी अलगनो कीने फिंको र गया हिसा बद्दे वैनी एहम बुनी रखोर तेरे गाँव बोडो बोडो किंबुले बोहिल्ला फाबुनी कुड़ कुड़ फुल्ला हादा चरी का ही दिन थी उलेनी अलगनों की बुरे कश मच्छा अरा गंगिंगा दामा कुड़ कुड़ फुल्ला किंबु के बुरे कश मच्छा अरंग उलेनी को मम्मा फातुम दुए फागुसे बगोआ दरिफ्ला आधे आधे मम्मा बुने में नूनु दाशे अधि कुड़ कुड़ फुल्ला गे मम्मा आस कुड़ कुड़ फुल्ला दामा गनफी एका मकु कुड़ कुड़ फुल्ला गे इस्सा उती किंबुगे अंग तेरेगा वर गीन लेया कुड़ कुड़ फुल्ला वर बार रोवेमु मम्मा गे उंगु गावे बुने मम्मा मी अलोकनु मम्मा बुना गुने नी मदीमा वीता मवरी कामे मीगे फाउंगलुगनु मम्मा बुना गोता हदानं कुदिन्ने तिकुदिन वाने तिकुदिंगे मैंबे फैंग अधि मुदर रिसुंगे बुना गो हदं नुवता कुड़ कुड़ फुल्ला दिमावी काला हिता मवरी घमे दिमावे दाने शुक्रिया
1: हा दा हा मुले माशाल्लाह तिगोता वाक तक किया दी हदं ता बदवस किएगा
0: स्कूल गवस मादा किया वस हदं
1: आ वरर रंगल हेमा वरर रीति देवाह का अडवी जमियत के प्रोग्राम का देखो दिन वेगें वरर रीति बंजे किया दी फिदो हे मियत के प्रोग्राम का वरक गीना कांकां कोरे विजे दो
0: लब्बा

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो केरे मिंदम पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्या डूं
3: दिवे ही इंगे अमील लवंत कंग कुरी आरु है दे
4: दिवे ही इंगे उफेदुं तेरी कंग तक्वा दे
3: दिवे ही इंगे माजी इंगे मंजर ता सिफ़ा कोट दे
4: दिवे ही इंगे आडू
3: दिवे ही राज्य इंगे आडू
4: इंगा सतर्ष्टे का साल इस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
3: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: हमें खान का मस्तक चाहिए शिब्बा।
1: हॉलीवुड के मशहूर हॉरर कॉमेडी फिल्म रेडी और नॉट के देवाना बै रेडी और नॉट हिया आइकम डिजिटल प्लेटफॉर्म तगा रिलीज कुरिता एम में दोहे के तेरे का आदिया खिलाफ बड़ कामयाबी हो दैफी हुशाला देनी फातिमा समा
2: हॉलीवुड के मशहूर हॉरर कॉमेडी फिल्म रेडी और नॉट के देवाना बै रेडी और नॉट टू हिया आइकम डिजिटल प्लेटफॉर्म तक रिलीज कुरिता एम में दुआ के तेरेगा आदया खिलाफ बड़ कामयाब हो दैफी रिपोर्ट तबुनिगत का 7 मिलियन डॉलर के बजट को उफेदी में फिल्म पेपर व्यू रिलीज कुरिता एम में दुआ के तेरेगा वनी एगे बजट के 3 गुना आमदनी के गुत को हो दाफा आदि मिहातन सिनेमा तो का दक्का गेंगे कनिवेस फिल्म वनी दुनिया के बॉक्स ऑफिस होगा 43.3 मिलियन डॉलर लिबिफा ए फिल्म डिजिटल को रिलीज कुरी मिमो के फस बना दुआ हो रिलीज कुरी था कुड़ा वागुत कोले के तेरे का अमेरिका के अमेज़न टीवी स्टोर के एप्पना के मकाम फिल्म वानी हो दाफा फर्तम बैग वेस लीड रोल कुलुनो सामारा विविंग मि फिल्म के मैं रोल उन फिर नहीं रो कैथरीन न्यूटन आदि सारा मिशेल के लावेस मि फिल्म का मुहिम रोल तक कुले फवे मि फिल्म दिबे मुंगन्ना बोर्ड तरखी बाकुड़ी के फिल्मी दायरा के किना मि हूं बुननी मि फिल्म सीरीज के थीम वन पाएं उफेद मलिबुनो वरपोड़ हिवर कवाने कमा रेडियो नोट के फुरतम बैते हासना वार वना हर रिलीज कुरीरु ए फिल्म विश्वनी फंसास हैं मिलियन डॉलर के आम दनियल दिबिफा डिजिटल को मी फिल्म गन्न मी हुना फिल्म के इतुरुं कैमेरा फुरगाव के मंजर तका इंटरव्यू तो के इतुरुं फिल्म उनिको फवा पाए मंजर तविस बला लिवेने
3: You've caused quite a stir, Mrs. Lidomis. You married into that family. Now they're dead. What you didn't know is that this goes far beyond them. By surviving hide and seek, you've triggered a new game. This time against the High Council families. Double or nothing.
4: This part will be familiar.
3: They will try to kill you.
5: Welcome to our home.
3: Hunters, may the best family win.
6: Skippy screams.
3: The game begins in 5, 4, 3, 2, 1.
7: I'm not playing.
3: Okay. Prunella, kill the sister.
5: Whoever wins runs everything.
7: Everything?
4: The world.
7: Can't believe you dragged me out of this shit.
8: It's exciting. Well, exciting for me. It's terrifying for you.
9: Clear.

0: अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे?
1: हर चीज करो लिमिट के अंदर, लेकिन प्यार लिमिट के बहुत बाहर।
2: नहीं बनना है मुझे जिया का प्यार। डुंगरपुर मैन आर नॉट कट आउट फॉर मैरिज। आज तक मेरी फैमिली किसी ने शादी नहीं की, डिड यू नो दैट?
3: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में, जहाँ रेत देखते हो आप लोग लेट जाते हो।
4: Hi, I'm Anjali.
5: I'm married. I mean, Vinay Malhotra.
6: आज जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
1: Happy anniversary.
0: पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया।
1: ओ, ये तो गड़बड़ हो गई। अब जो गिफ्ट मैं चाहूंगा वो देना पड़ेगा।
0: आशु नो बदमाशी।

0: एंड आई नीड अ वीजा टू गेट टू उदयपुर.
1: आपको उदयपुर जाना है, हम आपको उदयपुर ले जा रहे हैं. अब इस बीच में आपको भीड़ ज्यादा देखनी.
2: Yes. You know I love you, right?
3: Yes. मैं शादी नहीं कर सकता.
0: कोई देख लेगा.
4: रे बावली, कौन क्या देखेगा, आज तक मन ने कुछ ना देखा. प्लीज आज ना रोक.
0: कौन है ये बाबू?
2: राहुल, कामनी के बचपन का प्यार.
5: हमारा घर जैसा भी हो, हम साथ मिलकर उसे खूबसूरत बनाएंगे. लेकिन अगर तुम साथ ना रही तो ना मेरा आज है ना आने वाला कल.